0: Celebrating 36 years of excellence.
1: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
0: This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
2: Sunrise Radio. जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड, कैंटन रोड, और 66 मोनार्क परेड, लंदन रोड, मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट एशियन funeralcare.com।
3: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
4: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
3: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
4: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
3: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
4: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
5: 90 and 130 द ब्रॉडवे, साउथ हॉल। सबसे सोना सड़ा सोना,
0: वसीम ज्वेलर्स।
6: At Tesco, we know that right now every little helps. That's why we've made Aldi Price Match available in over 2,000 Tesco Express stores. Price matching on essentials, so you can bag the basics with confidence. When every penny counts, just look out for the Aldi Price Match logo next time you nip into your local Express. Tesco, every little helps. Prices checked and matched in Aldi stores and online twice weekly. Pro rata excludes promotions. Selected products excludes Northern Ireland and Woosh. See tesco.com/Aldi Price Match.
7: Pam, what on earth has happened to your eye?
8: I don't know. I looked online, but then
7: Well, for what it's worth, to me it looks like what my gran said her old neighbour Queenie had. Her eyes went every colour of the rainbow. Had to bathe them in warm carrot juice every day for a year. You could give that a try.
9: It's best to get a gammy eye checked by an expert. That's why Specsavers can help treat eye problems in every store. Should have gone to
10: Unwanted Advice.
9: Savers. Conditions apply.
11: We got it at Selco.
12: Whatever job you've got on, flooring, building, plastering or joinery, at Selco Builders Warehouse, you'll get it done for less with trade-only prices on thousands of items in stock. This month, pick up a 2.44 by 1.22 metre sheet of 18mm general purpose plywood on a real deal for only £20. Check online for more trade.

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

आशीर वजाहत ऑन लीड वोकल सदके। इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज वेंसडे द सिक्स की सुबह शबनम साही के साथ। माया इन वॉटफर्ड, मीना इन

0: available at all Quality Foods outlets and other leading ethnic outlets across the UK.
1: दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार खेलो और जीतो प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में। खेल को जीतने के लिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहला सवाल, जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल भेजने की सबसे सही जगह कौन सी है?
2: Can I use my phone a friend, a cool Raj?
1: जी बिल्कुल।
2: Hi Raj, listen, is it bronze bank, silver bank, gold bank or platinum bank?
3: It's definitely gold bank.
2: I'd like to go with Raj's answer, please. Gold bank.
1: बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
4: विजिट द गोल्ड बैंक 215 द ब्रॉडवे साउथ ओ 0203 500 1111 goldbank.co.uk।
5: कविता ऑन सनराइज विद इंडियास बेस्ट डांसर ऑन सोनी टीवी। नथिंग बीट्स द फीलिंग यू गेट व्हेन डांसिंग, सो व्हेन यू फील लाइक डांसिंग, डांस। द स्टेज इज सेट, द डांसर्स आर रेडी। आर यू? इंडियास बेस्ट डांसर सीजन 5 कमिंग सून ऑन सोनी टीवी।

ए पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

रोज रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? नीना, नीना, अंजू, मंजू या मधु।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी लिख ले कहीं, चलने के लिए कहीं

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बह।